0: बेबे छली।
1: यार क्या बात आ, किदा थानो की लग्या है ये इदा गाना सुन के? वैसे है तो बहुत ज्यादा मायूस करने वाला या जे ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा जा डाउनफॉल वाला या, पर है तो सच्चाई है। देखो देखो कैपिटलिज्म ने ना सानू एक भुलेखा पाया होया या कि अगे वधो सब कुछ करो, पर मैनू लगता कि जिथे असी चढ़दी कला की गल करते हैं, जिथे असी अगे वधन की गल करते हैं, उथे एक चीज़ तो है यार, मिट्टी नालों दूर आने का दर्द जिहड़े लोग समझते आ उन्हां वास्ते बड़ी वड्डी गल आ। कहिंदे कि अपनी मिट्टी तो दूर आना, अजकल तो आप कहने ना कि असी तरक्की वास्ते आए हाँ, असी अपने रुजगार की भाल दे आए हाँ, अपने फ्यूचर चंगे ब्राइट फ्यूचर के लिए आए हाँ, पर किसी वेले जे आप अपने बुजुर्गों के वल वेखिए इन्ना बड़ी वड्डी गाल होंदी सी कि जा तेरा कख ना रवे, जा तेरा जिवें नहीं कहिंदे हुंदे सीगे कि तेरी औलाद नूं जे अग्गा बूटा ना लगे, जां मतलब वह चीज़ आ कि असी अपनियां नस्लां नालों टुट गए जिन्हों कहिंदे सीगे जा तेरा, मैं वह कहना नहीं चाहुंदा वह शब्द कि असी अपनियां नस्लां नालों साडी उह जिहड़ी जिहड़ियां नस्लां साडियां उत्थे होणियां सी उह होर धरती दे उपर हो गईयां। सो सानू कुदरत ने एक नियम दे विच बन्न के एक धरती ते भेजिया सी। देखो ये चीज़ा आ कि तुसीं जे इसनूं कैपिटलिज्म दे नाल वेखोगे तो बिल्कुल इहदा कोई तत्थ मोल नहीं आ, पर जे तुसीं इहनूं भावक भावनात्मक तरीके नाल, जे तुसीं इहनूं इमोशनल दे नाल, जे तुसीं अपनी मिट्टी मुहब्बत प्यार उस चीज़ दे नाल वेखोगे ना, तो बड़ी वड्डी गल आ कि जे तुसीं अपनी मिट्टी नालों दूर होना। जिहड़े शायर लोग आ, जिहड़े इंटलैक्चुअल लोग आ, वो इस चीज़ नूं बहुत वड्डा मानदे सी कि मिट्टी नालों दूर नहीं होना। जिवें तुसीं मेरा दागिस्तान किताब पढ़ी आ, तो जदों वो एक माँ का बच्चा बाहर दूजे मुल्क दे विच चला जांदा वो कमाइयां करन, तो वो जदों अपनी उहदे बड़े साल वो आउंदा नहीं, तो माँ नूं लगदा कि वो चाहे खरे हैगा भी कि नहीं हैगा, तो बड़े सालों बाद कि उहदा दोस्त आउंदा तो उहनूं सब तो पहले यह पुछदी आ कि वह कहिंदा कि तेरा पुत्तर हैगा, वह कहिंदी पहले मैनूं यह दस कि वह अपनी बोली नालों टुटिया तो नहीं, तो जे टुट गया तो वह नहीं हैगा, क्योंकि जिहदा अपनी मिट्टी नाल प्यार अपनी बोली नाल मुहब्बत आ उहदे वास्ते यह चीज़ां व्यर्थ ने। सो 905-673-3337 905-673-3337 गल्लां होर पासे चलियां गईयां। सो थानू की लगता कि रिश्तियां नालों, गूढ़े रिश्तियां नालों, अपने रिश्तियां नालों, खून के रिश्तियां नालों दूरी पा के परदेसां दीयां धरतियां ते लंबा समा वह जदाइया पाउणियां कि वह वर्थ इट हैगियां कि वह मुल उन्हां मुल हैगा उन्हां चीज़ां का, जे आपां पैसा कमाउण पिछे फ्यूचर पिछे रिश्ते छड्डी रखदे हां 8-9-10-10 साल 15-15 साल कि वर्थ हैगा। 905-673-3337 जुड़े हो पंजाबी लहरां दे नाल। जी सत श्री अकाल रुपिंदर जी, तुसीं आउने रहो।
2: हाँ जी सत श्री अकाल जी।
1: जी सत श्री अकाल जी।
2: सवाल ने सच्चा सारियां गल्लां जिन्नियां कहियां उन्हें गाइयां। हाँ जी, ये बंदा तो इत्थे तुरिया फिरदा कलबूता रूता उत्थे पंजाब जी फिर गया।
1: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। 905-673-3337 जुड़िया पंजाबी लहरां दे नाल।

TDS होम पेंटिंग हाजिर है तुहाडे घर बेसमेंट ते कमर्शियल यूनिट नू नवां बनाउण लई, नवे रंगां नाल चमकाउण लई। प्रोफेशनल पेंटिंग सर्विसेज, चाहे होवे स्प्रे पेंटिंग, किचन कैबिनेट रीफिनिशिंग, ड्राईवॉल रिपेयर ते स्टको रिमूवल, डेक ते फेंस पेंटिंग, फिनिश्ड बेसमेंट, हार्डवुड ते लैमिनेट फ्लोरिंग। घर कमर्शियल या इंडस्ट्रियल हर किस्म की पेंटिंग विच माहिर। अज ही कॉल करो BDS पेंटिंग दे जुगराज सिंह होना नू 905-965-6311 905-965-6311।

0: शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली, वेडिंग एनिवर्सरी, जागो, प्री वेडिंग, बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ली। याद रखो, देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नू 416-930-1251 416-930-1251।
1: चंगा ट्रक ते वधिया जॉब लैण लई कित्थे जावां?
2: तां फिर तू क्वालिटी लॉजिस्टिक क्वालिटी ट्रक सेल वालियां कोल जा, 12 महीने कम पाओ ते नाले चंगे डॉलर कमाओ।
0: क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक, जिन्हां नूं पाल है काबिल ते ईमानदार ट्रक ड्राइवर्स, ट्राला ड्राइवर्स ते ओनर ऑपरेटर्स दी। वधेरे जानकारी लई क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक दे जसवीर होरां नूं कॉल करो
2: 416-717-2929।
0: 416-717-2929 क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक, 14 स्टेनवे बुलेवर्ड, यूनिट 4, इटोबिको।
3: ओहो, सर्दी च हीट नहीं चलती ते गर्मी च एसी।
4: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
3: एसी फर्नेस, गैस लाइन, वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन, नव एयर कंफर्ट दे जितेंद्र संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
5: 647-706-6640।

0: लग्जरी सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पांटी बबली का विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
3: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

सतगुर होए दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कबहू झूरी है, सतगुर होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके एक बार फिर एक खूबसूरत चढ़दी कला वाली सवेर दे विच जियां नूं आखदे आ इस खूबसूरत सवेर नूं। ते अज दा रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां शुरू करदे हां, उम्मीद करदे हां तुसीं ठीक ठाक होवोगे, चढ़दी कला दे विच होवोगे। हमेशा दी तरह प्रोग्राम दे विच साडे नाल जुड़ चुके ने पंजाब दी धरती तों निरपक्ष निडर आवाज़ रमेश हुशियारपुरी जी। सो स्टूडियो दे नंबर रहणगे जी 905-673-3337 905-673-3337। स्टूडियो घड़ी के मुताबिक 7:06 हो चुके, थोड़ा साढ़ा साथ हुण तों लैके पूरे 8 बजे तक बनिया रहना।

0: Corner Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: 6 फुट 2 इंच लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
2: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा। चैंपियन इन पराठा मार्केट,
3: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स, 9054512600, 905-400-5526।
4: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
5: ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿਸਿਸ ਸਾਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬਨ 55-60 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਾਓ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
6: ਤਵਾ ਕਿਚਨ, 50 Sunnyvale Gate, Brampton, Mountain Ash and Bovedda intersection, ya visit karo www.tawakitchen.ca, 905-790-1699, 905-790-1699, tawakitchen.ca।
7: हाँ भाई रणवीर, इधर फाइला चक्की फिरदा सवेरे सवेरे।
8: ओ पाजी, मोर्गेज लई महीना हो गया, एक दफ्तर तो दूजे दफ्तर चक्कर काटदे हुए। यार आ किन्ने सवाल जवाब करदे ने मोर्गेज वाले।
7: देख भाई, जे तू लेना मोर्गेज या लोन
9: ते तेरा काम 24 घंटियां च करनगे मिस्टर संधू।
8: अच्छा जी।
10: आहो जी, नीड प्राइवेट मोर्गेज एंड लोन्स, देन कॉल मिस्टर संधू एट 9056712000। नो क्वेश्चंस, नो क्रेडिट चेक, लोन अप्रूवल विद इन 24 आवर्स। नंबर रखो याद, 905-671-2000, 9056712000।
11: सुनो जी, किथे हो? 11:30 हो गया रात दी, घरे नहीं आना अज?
12: मैं सेविंग कर रहा, नाले ग्रोसरी खरीद रहा, नजारा आ रहा हैगा।
11: झूठ बोलन दी आदत नहीं की तुहाडी? रात नो 11:30 केड़ा ग्रोसरी स्टोर खुला होया?
12: फ्रेश ग्रोसरी डिपो रात दे 12 बजे तक खुलदे ने, जिन्हां दा कहंदे एक डोर तो बढ़ो दूजे तो निकलो, सेविंग 100 डॉलर दी। 905-458-1331, स्टेपल बुश स्टॉप रूम ते स्टेपल बुश दा इंटरसेक्शन, फ्रेश ग्रोसरी डिपो, 905-458-1300।
13: छोटा मोटा कर्जा या करवानी है कोई भी घर विच रेनोवेशन, होम एक्विटी वीजा ले सकते हो। साधारण क्रेडिट कार्ड नालों कितने कट ब्याज आसानी नाल उपलब्धता।
14: आज ही होम एक्विटी वीजा लेन दे लई कॉल करो 905-671-2000, 905-671-2000। कुछ शर्तें लागू होती हैं।
15: ओ यार, बिजनेस दा माड़ा हाल होया पिया, इन्नी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
16: निर्बल बाबे ने कहा सी कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा ता हो ही नहीं।
17: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
18: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता?
19: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।
20: पापा पापा, सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
21: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
22: अरे महेश, अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो,
18: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1, रेडियो आवाज।

0: एंड सर्टिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी।
1: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए जेटीए में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।
2: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी

Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900

0: A to Z किचन कैबिनेट भई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करदे हन लक्की भाजी दीआं बणीआं किचन कैबिनेट देखे गुआंढी वी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरीआं किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो
1: ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੈਨਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਅਪਰੂਵਲ ਫਾਸਟ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ 416-524-3535 416-524-3535 ਵਿਦੇਸ਼ ਆਬਰਾ ਫਰੋਮ ਪਲੈਨਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
2: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
0: डॉक्टर कुमार डॉक्टर कुमार डॉक्टर कुमार डॉक्टर कुमार लगे हुए नशे तो मुक्ति दवाने वास्ते शराब अफीम पोस्त डोडिया के नशे तो दूर कर देंगे डॉक्टर कुमार लेडीज के मर्दों के गुप्त रोगों का इलाज डॉक्टर कुमार बुजुर्गों के मोढ़े गोडे दुखते हैं भाई डॉक्टर कुमार हर्बल वैगरा भी तुहानू वेचदे डॉक्टर कुमार हर तरह के इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा मार्टन गुरु घर के कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल कर सकते हो।

0: डोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165।
1: भाई साहब, जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानु सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है, ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो कर दी है, ते कवरेज इंक्रीज कर दी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-5500।
3: आज खुश तो बात होगी
4: ओ ता होना ही है जो ढिलों वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे तई नकदा बनदा ही है।
3: आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
4: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी, लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नु वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है। ते नाले ढिल्लो वीडियो कोल गुरबाणी रेडियो भी है, ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा?
5: चल क्या रहे हो यहां पर?
4: ओ भाजी, सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
6: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
4: पर ढिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड, 905-204-1313 जां ढिल्लोवीडियो.com। होर कोई सेवा?
7: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
8: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन, इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
7: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
9: मित्रां दे जंक्शन ते,
10: ओ केड़े जंक्शन ते?
11: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते।
9: रात लगियां महफलां रे
11: भाई, महफलां ते रोज ही लगदियां ने। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते, इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ, ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकेट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM, ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
12: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. Tusi cheap flight tickets Nepal de vichon, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne, jan tusi visa services Nepal de vichon, puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna maji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200. Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection of Perth.
13: Ek life hai jisse love hai,
14: ye kehte mujhse sab hai,
15: aur ek ghar hai.

0: first year second mortgage or refinance करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015 Simply Indian brings you all simply delicious deals buy one get one free every day सुबह 10 बजे शाम 7 बजे तक on dine in and take outs मजा लवो संडे नो पराठा प्लेट मंडे मनपसंद कुलचा प्लेट ट्यूसडे चना भटूरा वेडनेसडे लाजवाब वेज थाली थर्सडे यमी हाका थाली फ्राइडे मजा लवो साग मक्की दी रोटी दा ए यमी डील्स सिंपली इंडियन दी सारिया ही लोकेशंस ते डाइनिंग टेक आउट एंड केटरिंग आल्सो अवेलेबल कॉल एट 9057948111 सिंपली डिलीशियस मतलब सिंपली इंडियन
1: लखा दिला दी धड़कन द सुपरस्टार एमी वेल
2: मैं किथे बैठे आ करूं आओ जट खब्बी सीट पे बंदूक रख
1: दे ब्लू साउंड लाइव एंड सेल्यूलर पॉइंट प्रेजेंट एमी वेल लाइव इन टोरंटो

0: वाले रेडी हो जाओ, बाय योर टिकट्स एट ticketmaster.ca और कॉल 6479648573।
1: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 6457-3381 ते।
1: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
4: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
5: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुने कॉल करो 905-564-6444
4: 5564-6444।
5: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो, चलो AM 530 तो।